नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनि र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: घर।
1: वर्ल्डिंग को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउंड होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर नेट टीवी सेट टॉप बॉक्स मात्र ₹1200 प्रति महीना में। शर्तहरू लागू होने छन्। छिटो बने गई वर्ल्डिंग।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set up box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. सर्थरु लागू होने चं. छिटो बने गई Willing.
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज.

0: तमोली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: दमोली बजार घुम्दा घुम्दै थकाएर भोक पनि लाइसक्यो, के खाछ हानि होला खै?
2: जान न त मीनाक्षी चटपट एन्ड पानी पुरी पसलमा।
3: हजुर, हामी कहाँ सफा छिटो र मिठो पानी पुरी, चटपट दही पुरी, आइसक्रिम र चिसो पाइन्छ।
2: प्रोप्राइटर चन्दन बानिया, ब्यास 2, गणेशमान चोक, बाल मन्दिर गेट अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 26 60 09 91 97 0 74 0 42 34।

शर्मा क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन में क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनी नागरिकता मात्र भई पुग्छ सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मान्छ फागुन।